0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से जेजो लंका के मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाउ रियो होयो मजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दि पेंडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो ति मो ने ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: जे बिन जे जो होयो गोया बोदा
3: होयो ला
4: 把做钱不没有危机，场面解决难困难，马上有呢，也不有。这句难不毛那样，爹娘这句咋话意？这句俺最用难图，可得牛子千里过地没动啊当，可得真正多难没动啊，出来多呢，可得没动啊，可得动个。
5: 三门一万几下子，搁钱不嘞？最近俺去，真正这从来送出去呢。罗拉的家当，也是学生的对面，罗拉下都一万下子，给你写的。人家的对面，这就可有钱，全部。

लगर ची छो भी सायना दीची जे मितुन जम चुवा ना बा शाला गा जु मन तु मांसु जे दीची छोवा न्यानों न्यू भी लजी सेंदू